0: फायदे की बात, और तुम स्पीकर फोन पे और जरा सा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज़ें आ रही है। मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
0: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
0: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
0: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
0: अच्छा तो दुबई जाना है
1: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
0: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: ठीक है।
0: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था।
1: आपने सही कह रहा है।
0: तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए।
1: नहीं बोलना।
0: भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
0: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं? ठीक है मैं रखता हूँ,
1: करवा देना भी है
0: आपसे। मरवाओ के क्या उठ जाएंगे?
1: सॉरी।
0: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके।
0: आई लव यू टू।
2: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके आदमी।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपका इरादा तो ये था कि आप अपनी बेस्टी और अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को इकट्ठे शिप करोगे, लेकिन इन द प्रोसेस यू एंडेड अप गेटिंग नॉटी विद दिस फ्रेंड. आपको क्या सोच क्या रहे थे आप?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: एनीवे, व्हाटएवर यू वर थिंकिंग, अगर आपके पास है एक कन्फेशन तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर. आपने जो मुझे कन्फेशन लिख कर भेजी है ऑन
4: इंस्टाग्राम, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ.
2: एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदात के दिन?
4: सो यार क्या हुआ कि आई वाज ऑन अ डेटिंग ऐप, सो आई मेट दिस गर्ल एंड शी वाज लाइक यार ये है वो है, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक स्पेन, आई लाइक दैट. तो मैंने बोले कि आई नो फ्रेंच, I know Spanish also. I've been there many times.
2: ये सच था कि नहीं?
4: पंगा नहीं यार, मैं झज्जर से आगे नहीं गया. हरियाणा में रहते हैं मेरे चाचा जी, उनके यहाँ जाता हूँ मैं लास्ट. मुझे नहीं पता सीन है कहाँ. वो तो मैं फिल्में देखता रहता हूँ तो मुझे समझ रहता है. और जो लड़की है जो मुझे मिली है वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा सा वो है, वो होता है ना जो जाट टाइप के लोग जो थोड़ा सा कम समझते हैं चीजों को.
2: ऐसे नहीं बोल सकता यार, तो इसे काटना पड़ेगा. बस वो उन टाइप के लोग हैं जो मतलब थोड़ी सी जो भी बोल जाट नहीं बोल सकता, ठीक है.
4: जो जो लड़की मुझे मिली है ना वो एक्चुअली उनको लैंग्वेजेस का उनको पता नहीं है ज्यादा, मतलब समझ नहीं पाते. उनको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ ठीक है. सो व्हेनेवर वी गेट इंटीमेट ना, नो सो शी आस्क्ड मी टू स्पीक इन स्पैनिश, रशियन. बट मुझे खुद नहीं पता कि स्पेनिश कौन सी होती है, रशियन कौन सी होती है. तो हम खरसो क्रोजो जो जो मैंने फिल्मों में सुना है, मेरे को पता मैं खाने का नाम ले रहा हूँ, बनाने का नाम ले रहा हूँ. बट आई एम जस्ट डूइंग इट एंड शी इज लाइक इट. तो मैं समझ नहीं पा रहा कि शुड आई टेल हर. हाँ तो फिर मैं फ्लो फ्लो में मैं चीज केक ना बोल दूं, मुझे वो डर है बस, क्योंकि वो इंग्लिश होता है.
2: एक थैंक्स फॉर टेलिंग मी, मुझे कोई आइडिया नहीं था चीज़ केक इज एन इंग्लिश. लेकिन लाइक एक सैंपल तो दीजिए हमारे जनता को और मुझे कि जब लाइक मान लीजिए.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

मैंने अपने फोन पर तुम्हारा नाम डीजी रखा है एंड आई वाज लाइक डीजी बट मेरा नाम तो रोशी है यू कैन बेस्ट कॉल मी मिर्ची रोशी बट डीजी क्या होता है एंड अ गाय गोज अहेड एंड सेज डीजी इज शॉर्ट फॉर ड्रीम गर्ल तो मेरी ड्रीम गर्ल जो हो एंड आई वाज लाइक मन में मैं ये सोच रही हूँ कि आई डोंट नो वेदर टू फाइंड दिस क्यूट और फाइंड दिस क्रीपी क्योंकि मैं इस बंदे को डेटिंग ऐप पर मिली थी वी ओनली जस्ट चैटेड फॉर लाइक 5 days हमने कभी फोन पर भी बात नहीं की है सिर्फ डेटिंग ऐप पर कॉन्वर्सेशन की है हमारे पास एक दूसरे का फोन नंबर नहीं है एंड ही इज ऑलरेडी कॉलिंग मी हिज डीजी आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड अप्रिशिएट इट और रन फॉर माई लाइफ आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए इस बंदे को ब्लॉक या इस बंदे के साथ अपना फोन नंबर एक्सचेंज एंड वट एवर द आंसर टू दैट इज विच आई एम रियली क्यूरियस टू नो बाय द वे व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर वी विल गेट टॉकिंग एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Bro, आपका एक्स कभी आपका स्टॉकर बना है? आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज मेरा एक एक्स है जो बीच में ना ऐसे हमारा वी लॉस्ट टच एंड ऑल एंड देन ही गॉट बैक इन टच विद मी बिकॉज उसकी शादी थोड़ी सी ऑन द रॉक्स थी व्हाटएवर और उसके बाद वो मुझे लाइक रोज फोन करने लगा एंड एक पॉइंट के बाद आई डिडंट अप्रिशिएट इट तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी डायरेक्ट पर्सन लाइक दिस व्हेन आई एम टर्निंग पीपल डाउन और मैं उसके कॉल्स अवॉइड करने लग गई. फिर ही रिजॉर्टेड टू सेंडिंग मी मैसेजेस हर तीसरे दिन कोई ऐसा सवाल पूछते हुए जिसका जवाब मुझे उसे देना पड़ा लाइक यू नो डू यू नो अ गुड डॉक्टर क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे दिल की एकदम ठीक नहीं है. तो ऑब्वियसली आप सामने वाले से पूछोगे क्यों क्या हो गया एंड देन ही'ड बी लाइक कि नहीं सब ठीक है ऐसे अजीब सी उदासी हो रही है एंड आई एम लाइक यार आई कैन टेल दैट यू आर यूजिंग ऑल दीज प्लॉयज ताकि मैं तुझसे बात करूँ और मुझे तुझसे बात नहीं करनी है. अब जितनी बार इस बंदे का मैसेज आता है ना आई एम नॉट इवन किडिंग यू मेरी हालत खराब जाती है बिकॉज यू ना स्लोली स्टॉकर प्रोपोर्शंस ले रहा है मेरी जिंदगी में. मैं तो इसे ब्लॉक करने वाली हूं लेकिन अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है एंड यू वांट टू कंपेयर नोट्स विद मी व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड मिस्टर एक्स अगर आप ये सब सुन रहे हो प्लीज डोंट हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी. इनफैक्ट डोंट हिट मी अप एट ऑल अदरवाइज आई विल बी कंपेल्ड टू हिट यू. ऑन दैट नोट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabala, uskabala, sakabala.
2: Rabala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Anji.
4: Vivek ji.
3: Anji, bataiye.
4: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासेज, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा,
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
4: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
4: अच्छा अच्छा,
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ, अब इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत।
4: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आपके डार्क ग्लासेस सुंदर सस्ते टिकाऊ भी हैं, मतलब आपने 150 रुपए के खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता. जब पहली डेट पर जा रहे हो, मेक श्योर दैट इट्स अ डेट लाइक इन द लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग. वो डार्क ग्लासेस पहन कर जाना, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से जैसे ही तनु काला चश्मा जचदा है, इट एक्चुअली मेक्स यू लुक सेक्सियर एंड हॉटर. सो ट्राई दिस टिप एंड ट्रिक, एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे हिट अप कर सकते हैं इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर अभी मंगेश है. हाय बेब, हाउ आर यू?
3: आई एम गुड, हाउ आर यू रोशी?
2: आई एम वेरी गुड. आपने मुझे कहा था दैट यू हैव अ कन्फेशन.
3: राइट नाउ आई डोंट हैव अ कन्फेशन, राइट नाउ आई नीड योर एडवाइस.
2: बताओ ना.
3: द थिंग इज कि नो, आई एम स्टडीइंग इन दिस बी स्कूल डूइंग माय MBA, एंड देयर आर मेनी गर्ल्स, एंड दिस वन गर्ल आई लाइक. सो व्हाट हैपनिंग इज शी इज अ रेटिसेंट टाइप, शी डजंट टॉक टू एनीवन, बट she just talk to me. She does talk to me, matlab it's like a Q&A more type. I ask her, she gives an answer. When I call her to meet, she does come and meet me, and we talk for hours. But you know, it's just there, it's not going forward, and I just wanted to say, how should I go forward? How should I just cross the line and let her know?
2: Honestly, first things first, let's try and figure out ki ye bandi aapke saath sirf achhi dost hai ya is she also interested in you. इसके 2-3 पैरामीटर्स होते हैं. पहले तो हम समझ गए हैं कि आप जब बुलाते हो तो आ जाती है और सिर्फ आपसे बात करती है. सो दीज आर टू वेरी गुड ग्रीन फ्लैग्स कि वो इंटरेस्टेड तो है. बट टू नो कि वो रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, यू विल हैव टू हेल्प मी फिगर आउट अ कपल ऑफ थिंग्स. जब आप लोग इकट्ठे बैठे होते हो, या यू गाइस आर वॉचिंग अ मूवी, या आप कॉफी पी रहे होते हो, तो मान ले अदर साइड है और आपका पैर लग जाता है दूसरे इंसान के पैर से, तो क्या वो अपना पैर हटा लेती है या वो अपना पैर वहीं रहने देती
3: है? नहीं हटाते हैं.
2: सो शी फील्स योर पैर बट शी डज नॉट लाइक पुल हर पैर बैक. करेक्ट. ओके, रियली नाइस. तो एक काम कर, पहले तो 1-2 हफ्ते ये फिगर आउट कर कि जब तू ऐसे लाइक फिजिकल कॉन्टेक्ट करता है कि आंखों में उसके बाल आ रहे हैं, तूने उसके बाल एक झटके में पीछे कर दिए, ठीक है? जस्ट सी हाउ शी रिएक्ट्स टू दैट. जस्ट ट्राई एंड बिकम मोर इंटीमेट फर्स्ट. और इंटीमेट का मतलब है जहां तू टेबल की दूसरी साइड बैठता है, कभी कभी टेबल के थोड़ा उसके करीब बैठने की कोशिश कर. ट्राई एंड हैव मोर इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस. इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस का मतलब ये है कि आपने ऐसे सवाल पूछे जो उसकी जिंदगी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. Like, you know, how's your relationship with your dad? How's your relationship with your mom? अगर वो खुल के बात कर सकती है, that means कि वो तुझे

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: करनी थी।
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की।
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: यार 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

अटक, लॉन्डो के दिल पटक पटक, ससे जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

वो मेरी रो का एनिवर्सरी भूल गया है, आई डोंट नो इफ आई शुड गेट मैरिड टू हिम और नॉट. एंड आई वाज लाइक, ये मैं क्या सुन रही हूँ, व्हाट. हमारे ऑफिस में एक लड़की है हु वाज फाउंड कंप्लेनिंग टू हर फेलो कॉलीग जो साथ में बैठी हुई थी, एंड आई डोंट नो मेरे कान ऐसे, आई एंडेड अप ओवर हियरिंग दैट कॉन्वर्सेशन. वो क्लिप कर रही थी कि उसकी रो का एनिवर्सरी उसका होने वाला पति भूल गया बिकॉज ही वॉज टू बिजी शॉपिंग फॉर देयर शादी विच वॉज गोइंग टू हैपन 3 months फ्रॉम नाउ. एंड आई वॉन्टेड टू टेल हर कि हो सकता है बेब वो तुम्हारी शादी के लिए इतना एक्साइटेड है कि भूल गया कि आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले तुम्हारा रोका हुआ था. बट यू नो वॉट, उसकी कॉलीग जो उसकी दोस्त भी है, उसने इस बंदे को साइलेंटली एक टेक्स्ट लिख के भेजा कि तू रोका एनिवर्सरी भूल गया, बहुत बड़ी बात है यार, बंदी बहुत नाराज है एंड जस्टिफाइबली सो. ये रोका एनिवर्सरी क्या वस्तु है, लाइक वॉट इवन. People like us who are single, there is no anniversary. साल में एक बर्थडे आता है, उसी से काम चलाना पड़ता है. आप लोग रोका एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. You guys are living in a totally different dimension. अगर आप भी मेरी तरह सिंगल हैं and just don't know what this is about, I think we should compare notes. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरा बर्थडे आता है 27th August को. एंड नो, there is no roka anniversary, sorry, there is no anniversary. On that note, kahin mat jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपने बोरिंग रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाना चाहते हो, ब्रेनस्टॉर्म करो बिल्कुल ऑफिस की तरह, एक्सेप्ट जिस चीज के बारे में आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट. आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है अ लिस्ट ऑफ फैंटेसीज जो आप और आपके पार्टनर दोनों के दिमाग में कभी ना कभी इट हैज क्रॉस्ड योर माइंड. एंड अगर आप दोनों अग्री करते हो दैट दिस इज समथिंग यू बोथ वॉन्ट टू ट्राई आउट टुगेदर, ग्रेट. अगर यू आर कन्फ्यूज कि शायद मे बी नॉट, पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ मे बी वी विल रीविजिट दिस लेटर. इस लिस्ट को बनाना इट सेल्फ इज सो मच फन, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ डिजायर्स यू हैव वो ही अकेले पुट्स यू इन द मूड फॉर लव. ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज आई आस्क्ड माय बेस्टी टू ट्राई इट विद हर पार्टनर एंड द सक्सेस रिजल्ट वाज 100%. मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में भी ट्राई करके देखना चाहिए. वेदर इट्स अ न्यू रिलेशनशिप और नॉट दैट डजंट मैटर बिकॉज हु डजंट लाइक स्टेपिंग अप द हीट अ लिटिल बिट. नहीं, इसे ट्राई करके देखो एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू मुझे थैंक यू बोलने के लिए. यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड हिट मी अप एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा
2: है? इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
1: पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है
1: भाई, जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहा है।
2: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा हैं बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ,
1: करवा देना भी है आपसे।
2: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: Okay.
2: I love you.
1: I love you too.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपका इरादा तो ये था कि आप अपनी बेस्टी और अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को इकट्ठे शिप करोगे, लेकिन इन द प्रोसेस यू एंडेड अप गेटिंग नॉटी विद दिस फ्रेंड. आपको क्या सोच कह रहे थे आप?
3: The secret box.
2: Anyway, whatever you were thinking, अगर आपके पास है एक कन्फेशन तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर. आपने जो मुझे कन्फेशन लिख कर भेजी है ऑन इंस्टाग्राम,
4: सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ.
2: एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदात के दिन?
4: सो यार क्या हुआ कि आई वाज ऑन अ डेटिंग ऐप, सो आई मेट दिस गर्ल एंड शी वाज लाइक कि यार ये है वो है, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक स्पेन, आई लाइक दैट. तो मैंने बोले कि आई नो फ्रेंच, I know Spanish also. I've been there many times.
2: ये सच था कि नहीं?
4: पंगा नहीं यार, मैं झज्जर से आगे नहीं गया. हरियाणा में रहते हैं मेरे चाचा जी, उनके यहाँ जाता हूँ मैं लास्ट. मुझे नहीं पता स्पेन है कहाँ. वो तो मैं फिल्म में देखता रहता हूँ, तो मुझे समझ रहते हैं. और जो लड़की है जो मुझे मिली है वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा सा वो है, वो होते हैं ना जो जाट टाइप के लोग जो थोड़ा सा कम समझते हैं चीजों को.
2: ऐसे नहीं बोल सकता यार, तू इसे काटना पड़ेगा. बस वो उन टाइप के लोग हैं जो मतलब थोड़ी सी जो भी बोल जाट नहीं बोल सकता, ठीक है.
4: जो जो लड़की मुझे मिली है ना वो एक्चुअली उनको लैंग्वेजेस का उनको पता नहीं है ज्यादा, मतलब वो समझ नहीं पाते. उनको लगता है कि मैं जो बोलता हूँ ठीक है. सो व्हेनेवर वी गेट इंटीमेट ना, नो सो शी आस्क्ड मी टू स्पीक इन स्पैनिश, रशियन. बट मुझे खुद नहीं पता कि स्पेनिश कौन सी होती है, रशियन कौन सी होती है. तो हम खरसो क्रोजो जो जो मैंने फिल्मों में सुना है, मेरे को पता, मैं खाने का नाम ले रहा हूँ, बनाने का नाम ले रहा हूँ. बट आई एम डूइंग इट एंड शी इज लाइक तो मैं समझ नहीं पा रहा कि शुड आई टेल हर. हाँ थोड़ी देर में ऐसे स्लो फ्लो में मैं चीज केक ना बोल दूं, मुझे वो डर है बस, क्योंकि वो इंग्लिश होता है.
2: एक थैंक्स फॉर टेलिंग मी, मुझे कोई आइडिया नहीं था चीज केक इज एन इंग्लिश वर्ड. लेकिन लाइक एक सैंपल तो दीजिए हमारे जनता को और मुझे कि जब लाइक मान
4: लीजिए. मुझे नहीं पता क्या होता है सब, पर ठीक है.
2: This sounds so convincing. आप जो भी कह रहे थे, I wanted to say, of course, yes, yes.
4: I totally understand.
2: I am sure you can totally understand. मुझे लगता है कि आपको आपकी बंदी को अगर लग रहा है कि आप croissant la framboise बोल रहे हो और उसको लग रहा है कि ये French Russian है, why stop the game now? आपको roshify कर दूँ?
4: I don't want to stop the game. I just want to come clean.
2: Before you say jalebi, bhai, that's just gonna ruin your game.
4: Yeah.
2: अगर आप मुझे एक सेंटेंस अपने ये फेक रशियन फ्रेंच जो भी स्पैनिश में एक सेंटेंस बोल दो कि मैं आपको रोशिफाई कर दूंगी.
4: पक्का वैसे बोलूंगा, प्लीज ट्राई करता हूं. रशियन बॉय खुशो खुशो खुशो या जी जी.
2: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, you have been roshified. One second.
0: You have been roshified.
2: Whatever this was.
4: Okay,
2: thank you very much. और मुझे भी ऐसा लग रहा था ये कुछ और ही हो रहा है. On that note, अगर आपके पास है कोई secret confession, hit me up Insta पर या FP पर. I'll be happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: गुड़ बॉय बन जाता हूँ।
1: उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस। गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट। प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस। मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इनक्रेडिबल ट्रिक जो मैंने कुछ साल पहले सीखी थी टू हेल्प मी एंजॉय थिंग्स जो मुझे करना पसंद नहीं था. कभी कभी ऐसे होता था कि मैं बर्तन ड्यूटी पर होती थी. अब बर्तन करने मुझे कुछ खास पसंद नहीं होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 साल पहले. लेकिन अगर मेरी बारी होती थी तो मुझे बर्तन धोने होते थे. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज देयर इज दिस इनक्रेडिबल टेक्निक कॉल्ड डोपामाइन एंकरिंग. अगर आप एक ऐसा काम जो आपको बहुत पसंद है उसे एक ऐसे काम के साथ क्लब करते हो जो आपको नहीं पसंद, आपका ब्रेन ट्रिक हो जाएगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल एंड अप एंजॉयिंग द थिंग दैट यू डोंट लाइक बिकॉज आप उसे एसोसिएट करते हो विद द अदर थिंग दैट यू लाइक. सो आई टेल यू व्हाट आई डिड. जब मुझे बर्तन धोने होते थे मैं पीछे आरडी बर्मन या किशोर कुमार के गाने चला लेती थी. अब बिकॉज मेरे ब्रेन को पता था कि आरडी बर्मन के गाने तो हमें पसंद हैं, धीरे धीरे करके मेरे ब्रेन को लगने लगा कि हमें बर्तन धोना भी पसंद है क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं एक टाइम पर कर रही थी. तो अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पसंद, दैट कुड बी डूइंग योर मैथ्स एल्गोरिथम और इट कुड बी डूइंग योर एक्सेल शीट्स काम के लिए, अगर आप बैकग्राउंड में कुछ और ऐसा कर रहे हो विच यू एक्चुअली फाइंड प्लेजरेबल, दैट कुड बी लिसनिंग टू द साउंड ऑफ अ वाटरफॉल या कुछ भी, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखो एंड यू विल बी अमेज्ड एट द इफेक्ट दैट डोपामाइन एंकरिंग हैज एंड यू आर वेलकम फॉर इट. और ये सब मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई लव यू सो मच. और जिसके पास लव है उसके पास सब है. And I love you, Lord.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन द मिर्ची टॉप 20 एंड टॉकिंग ऑफ नंबर 20 वी हैव गॉट एआर रहमान, इरशाद कामिल, वेदांग रायना और निलंजना घोष। एक ऐसा गाना जो पता नहीं क्यों मैं हर जगह सुन रहा हूं, दिस इज मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा
4: नंबर 20।

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpayee ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. Lekin ye bhi utna hi sach hai ki agar ye gana kisi choti film ka hissa na hota, to shayad aaj aur zyada log iske bare mein baat kar rahe hote. और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है. आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं. जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं. ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है. और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते. कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था.

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोज बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल 4 से।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
2: ओ मेरी बात सुन,
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो
2: जब डर गया था,
1: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
1: आदमी फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने तो तुझसे
1: वाली बातें कर रहा
2: है? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर, पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है? नहीं,
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
1: रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर,
2: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
1: यार।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 70।
5: फूफा

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: Oh my God. हर generation का definitive heartbreak anthem. एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है. और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्टब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है. ये बात ही अजीब है क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्टब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है. इट्स द मैन. इस हफ्ते नंबर 16 पर है एआर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है. लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला. क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है. और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं. You've heard this song in Ravan. नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्टब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है. थैंक यू विशाल एंड शेखर. Here is my rewind track. This is भरे नैना.
1: Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। जरा सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वार्मथ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 2।

मशरूका इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बात हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है। और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसे ही दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस इज शरारत 19th वीक एट नंबर 1।

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जीन्स पर. सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: जब भी राजकुमार साहब का जिक्र होता है, जानी लव्स अपने आप ही जहन में आ जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन सच बात ये है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में जानी लव्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि 1968 की फिल्म वासना, जी इस नाम से भी फिल्में बनती थी, इसमें उन्होंने, सुनिए इस डायलॉग में कैसे जानी बोला।
2: और डालो जानी,
3: अपन ने शराब उधार बेचने का कसम खाया है, ये बोर्ड में देखते हैं आज न कल उधार।
2: ये तो वो बात हुई जानी कि आज मरो और कल जियो।
1: अच्छा, ज्यादातर ये माना जाता है कि वक्त फिल्म के किसी बहुत पॉपुलर डायलॉग में उन्होंने जानी बोला है, जबकि ऐसा नहीं था। हुआ कुछ यूं था कि श्रीदेवी ने चालबाज फिल्म के कॉमेडी सीन में उनकी मिमिक्री करते हुए वक्त फिल्म के डायलॉग को कुछ ऐसे बोला था, सुनिए।
4: जानी ये चाकू है, क्या है?
5: चाकू,
4: हाँ, लग जाए तो खून निकल आता है।
1: और वाकई में वक्त फिल्म का डायलॉग क्या है, जब वो विलन के हाथ में चाकू को देखकर ये बोलते हैं,
2: ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
1: सो द ट्रूथ इज, राजकुमार साहब ने फिल्मों में ज्यादा जानी नहीं बोला है, बल्कि वो रियल लाइफ में इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत करते थे। तो जानी, उन्हीं की फिल्म का गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: इसका बाना, उसका बाना, सबका बाना, क्या बाना? मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो को, मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात, और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाजें आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहे
4: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसे ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है आपसे।
4: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकीज़ा फिल्म कम्प्लीटली बिलोंग्स टू मीना कुमारी जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये बात भी है कि राजकुमार साहब ने उस फिल्म को एक अलग तरह से ओन किया था, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग्स बोले थे। जैसे कि ये एक डायलॉग जो मोहब्बत में बागी बनकर वो अपने बड़े अब्बा को बोलते हैं, सुनिए।
2: मैं भूल गया था इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है।
1: ओए होए होए होए, फिर उनका शायरी बोलने का अंदाज भी अजब गजब रहा है। इसी फिल्म में जब वो एक शेर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
3: बदल कर फकीरों का अंधे गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं।
1: ये हुई ना शेरों वाली बात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना
2: हिट हिट हिट हिट गाना

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब जब कोई किरदार निभाते थे तो किरदार उनमें नहीं घुसता था, वो किरदार में घुस जाते थे। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यही तो थी उनकी अलग बात। अच्छा, उनकी एक अर्ली 80s की मूवी थी बुलंदी, उसके कुछ डायलॉग सुनते हैं। एक सीन होता है जिसमें रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद डैनी उनको फेस करते हैं सड़क पे, तो उनको वो क्या बोलते हैं?
2: बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने, ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना, सड़कों पर नहीं।
1: इसी फिल्म में एक फंक्शन में वो एक शायरी भी बोलते हैं।
2: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
1: ऑल्सो इसी फिल्म में जब उनको मारने की धमकी दी जाती है तब वो क्या बोलते हैं, सुनिए।
2: हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
1: कितनी बार ये शेर सुना है, लेकिन राजकुमार साहब के मुंह से सुनना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: సరేగామా వన్ టూ త్రీ ఫోర్
1: సరేగామా సరేగంగా సరే మా
0: మంగారేసా
1: సరేగామా సరేగంగా సరే మా
0: మంగారేసా
1: మంగారేసా
0: మంగారేసా
1: మంగారేసా
0: మంగారేసా
1: మంగారేసా
0: మంగారేసా
2: जानी ये हमारा स्पेशल शो है राजकुमार स्पेशल।
3: सारे एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी एक तरफ। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और राजकुमार साहब डायलॉग्स ही बढ़िया नहीं बोलते थे, शायरी भी क्या बढ़िया बोलते थे। उनके रोमांटिक रोल्स में भी डायलॉग डिलीवरी अलग ही तरह की होती थी, जैसे उनकी फिल्म हीर रांझा में। सुनिए शायरी उन्होंने कैसे बोली।
4: तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं।
3: ओए होए होए होए, सदके जाऊं। वैसे राजकुमार साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1952 की फिल्म रंगीली से की थी। फिर उनको पहचान मिली 1957 की मदर इंडिया फिल्म से। हालांकि उसमें उनका रोल काफी छोटा सा था, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी बन गई कि राजकुमार भी बड़े बन गए। राजकुमार साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1964 की फिल्म दिल एक मंदिर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए। इसी का गाना सुनते हैं जो रील्स पे काफी ट्रेंडिंग है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

यानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब को उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए जिस फिल्म से पहचान मिली थी ना, वो थी 1965 की वक्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और खास तौर पे इस फिल्म में उनके और एक्टर रहमान, जो इसमें चिनॉय सेठ प्ले करते हैं, इन दोनों के बीच के जो डायलॉग्स थे ना, वो बहुत पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला।
2: ये काम सिर्फ राजा कर सकता है, और राजा ना करे तो राजा मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मोहब्बत और नफरत, चिनॉय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
1: ओए होए, ग्लास फोड़ दिया। नहीं, सही में इस सीन में जब ये डायलॉग खत्म होता है तो राजकुमार साहब के हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है जो वो टेबल पे ऐसे फोड़ देते हैं। इस फिल्म के लिए उनको अपना दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी
4: विवेक जी।
3: हाँ जी बताइए।
4: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं?
3: या ऑफ कोर्स।
4: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
3: हाँ ठीक ही कह रहे हो।
4: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
3: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
4: अच्छा
3: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है हम जो मर्जी करें।
4: बिल्कुल
3: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा,
4: थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन?
3: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
4: क्या हुआ क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
3: अरे कुछ नहीं यार।
4: नहीं फिर भी क्या मतलब, काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ क्या था?
3: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
4: अच्छा अच्छा।
3: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
4: अच्छा ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
3: हाँ
4: अभी चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत। आप कह रहे हो चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर?
3: मजे आ रहे हैं,
4: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
3: अरे तेरे को मजे आ रहे हैं यार, तू मजे ले रहा फोन करके?
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Rani Jeans with Charu, only on

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सीन्स में से एक है पाकीज़ा फिल्म का ट्रेन वाला सीन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग्स है वो डायलॉग जो राजकुमार साहब ने कहा है। उन्होंने जिस तरह से कहा है शायद इसीलिए वो आइकॉनिक बन गया है। तो सीन कुछ यूं होता है, राजकुमार साहब का जो किरदार है वो आनन फानन में बरसात की रात में ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट की जगह किसी गलत कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और वहाँ वो मीना कुमारी से मिलते हैं। एक्चुअली मिलते नहीं है क्योंकि वो तो सो रही होती है ना, और उनके चेहरे की तरफ तो वो ठीक से देखते ही नहीं है क्योंकि वो उनके खूबसूरत पाँव ही देखते रह जाते हैं। और फिर उनके पाँव में एक प्यारी सी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं। उस चिट्ठी पे क्या लिखा होता है ये सुनिए।
2: माफ कीजिएगा, इत्फाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर।
1: ओए होए होए होए होए होए। वैसे जिसने ये फिल्म देखी है ना वो ये जानता है कि जिस तरह से राजकुमार साहब का किरदार इसमें मीना कुमारी के किरदार से प्यार करता है वैसा प्यार हर कोई चाहता है, ट्रू लव। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर। सुनो, सुन रहे हो ना, मिर्ची पर
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi New York. It's hot.
1: Jani, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब का असली नाम कुलभूषण पंडित था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो तो फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना फिल्मी नाम रख लिया राजकुमार, जो उनको वेल सूटेड था क्योंकि राजकुमार राजा महाराजा जैसे वो रहते थे। और उनके कई पॉपुलर डायलॉग्स में से एक है उनकी लेट 80s की एक फिल्म सूर्या का ये डायलॉग। इस फिल्म में वो एक कलेक्टर प्ले करते हैं, सुनिए जरा।
2: हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार कर तबादला किया जा सकता है। कलेक्ट्री तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी?
1: वैसे कलेक्टर, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, इस तरह के रोल्स उनको बहुत ही नेचुरली सूट करते थे क्योंकि फिल्मों में आने से पहले वो बॉम्बे पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब करते थे। जी, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: पुरानी जींस चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: 1970 की फिल्म ही रांझा एक सुपरहिट फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इसके हिट होने का, इसके पोएटिक डायलॉग्स। इसमें हीर का रोल प्ले करती हैं प्रिया राजवंश और रांझा का रोल प्ले करते हैं राजकुमार साहब। और राजकुमार साहब हो और डायलॉग डिलीवरी की बात ना हो, कैसे हो सकता है। चलो उनके ढेंटर एंड डिशुम डिशुम एक्शन वाले डायलॉग्स जो होते थे वो तो एक से एक बढ़कर होते थे, लेकिन उनके ये जो रोमांटिक पोएटिक डायलॉग्स होते थे इनकी भी एक अलग ही बात है। तो हीर रांझा में एक शायरी जो वो रिसाइट करते हैं हीर के लिए, वो सुनते हैं।
2: तू जब आ जाती है पास, भूख मर जाती है, जाग उठती है प्यास, तुझ में भोलापन भी है, शोखी भी है, देख सकती काश अपना हुस्न मेरी आंख से, तू सब पाया है आशिक की नजर पाई नहीं, जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको अपनी याद भी आई नहीं।
1: ओए होए होए होए होए होए, दिल किडनी जिगर सब निकाल कर ले गए सर। अज्ञानी राजकुमार साहब, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: राजकुमार साहब की एक पॉपुलर इमेज ये थी कि वो बहुत आउटस्पोकन, बिंदास, इसेंट्रिक, सनकी टाइप के थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो ऐसे तो थे ही, लेकिन उनकी एक दूसरी साइड भी थी जहाँ वो बहुत ही काइंड, मॉडेस्ट और नरम दिल के थे। लेकिन यहाँ पर हम उनका एक सख्त डायलॉग सुनने वाले हैं वक्त फिल्म से। एक्चुअली 1965 की वक्त फिल्म है जिसने उनकी अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी को एक पहचान दी। इसमें उनके डायलॉग्स काफी हिट हुए थे, खास करके चिनॉय सेठ प्ले कर रहे रहमान के साथ जो उनके इंटरैक्शंस होते हैं। तो ऐसा ही एक इंटरैक्शन सुनते हैं।
2: चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था, अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता, चिनॉय सेठ।
1: तो ये एंड में जो आवाज आई ना, तो इसमें वो इस सीन में वो गन शॉट से दो लैंप फोड़ देते हैं। ये प्रोड्यूसर्स को राजकुमार साहब के डायलॉग्स बहुत महंगे पड़ते थे, कभी वो लैंप फोड़ देते थे, कभी ग्लास तोड़ देते थे। खैर, नरम दिल इंसान जब गुस्सा करता है तो काफी कड़क हो जाता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी, ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ। पुरानी जींस पर सुनो, सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: कौन?
4: हेलो विपिन,
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानक, मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तो अब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से, अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: हाँ ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
4: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेम फ्लाइट।
3: ओके ओके,
4: आई लव यू।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई पाकीज़ा फिल्म में राजकुमार साहब जिस तरह से मीना कुमारी जी से प्यार करते हैं ना, ऐसा प्यार करने वाला सबको मिले।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मोहब्बत के लिए इस फिल्म में वो अपने घर वालों से बगावत कर लेते हैं और इस बगावत वाले सीन के बाद ना एक सीन होता है जहाँ पे ये दोनों राजकुमार और मीना कुमारी एक बालकनी में खड़े होते हैं और बालकनी से सामने से नजारा दिख रहा होता है, पहाड़ होते हैं और झरना बह रहा होता है। और इसमें ना सिचुएशन कुछ यूं होती है कि मीना कुमारी जी ऐसा नाटक कर रही होती है कि उनको कुछ याद नहीं आ रहा है, वो अपने आप को भूल चुकी हैं। तो इस सीन में सुनिए इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है।
3: तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है।
4: लल्ला, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ।
1: उफ तौबा, सदके वारी जाऊं। और इसी रोमांटिक सीन के बाद आता है ये रोमांटिक गाना जो हम यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: कितनी ही सॉलिड होगी वो डायलॉग डिलीवरी जो राइटर्स को अच्छे डायलॉग्स लिखने पर मजबूर कर देती होगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी ही डायलॉग डिलीवरी करते थे राजकुमार साहब। किसी भी फिल्म में राजकुमार साहब हो, ये तो तय होता था कि उसके डायलॉग एकदम धांसू होंगे। ऐसी एक फिल्म थी लेट 80s की, मरते दम तक। इस फिल्म के उनके कुछ डायलॉग्स काफी पॉपुलर हैं, सुनिए जरा।
2: हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात को भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी।
1: क्या बात है भाई। वैसे आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी ना, प्लीज देखें, खास करके इसके दो ग्रेट एक्टर्स के लिए, राजकुमार साहब और ओम पुरी साहब। दोनों इसमें गैंगस्टर प्ले करते हैं जो आपस में भिड़ते रहते हैं, और क्या डायलॉग बाजी है दोनों के बीच में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहे।

0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर
1: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
2: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर।

0: जानी, ये हमारा स्पेशल शो है, राजकुमार स्पेशल।
1: भाई ऐसा सुनने में आता है कि राजकुमार साहब के फिल्मों के सेट पे अलग ही तरह के टैंट्रम्स होते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो बहुत पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग तो थे, लेकिन उनके टैंट्रम्स भी होते थे। जैसे कि उनको सफेद जूते पहनना बहुत पसंद था। कई बार यूं भी होता था कि सीन में वो जूते सूट भी नहीं कर रहे होते थे या रिक्वायर्ड भी नहीं होते थे, लेकिन उनको पहनने होते थे। वैसे चाहे डिशुम डिशुम, ढेंटड़न, एक्शन टाइप के रोल्स हों या सॉफ्ट रोमांटिक डायलॉग्स हों, राजकुमार साहब की डायलॉग डिलीवरी पार एक्सेलेंस। उनकी ही रांझा फिल्म का ये डायलॉग सुनिए जरा।
2: मोहब्बत का तमाशा, इश्क की तासीर देखोगे, मेरे सीने में, दिल में हीर की तस्वीर देखोगे।
1: क्या बात है। और इस फिल्म में उन पर पिक्चराइज्ड एक गाना, वो तो एक तरह का एंथम बन गया था उस टाइम पे जब रिलीज हुआ था, बहुत ही हिट हुआ था। इनफैक्ट आज भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो जब आप अपने लाइफ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग्स से, अपने दोस्तों से बेजार हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए और ये गाना सुन लें, तो एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जानी ये राजकुमार स्पेशल शो है चारू के साथ पुरानी जींस पर सुनो सुन रहे हो ना मिर्ची पर

0: मैं खत्म, तो खेल खत्म।
1: हेलो
2: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
1: नहीं, कौन बात कर रहा है
2: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
1: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
2: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
1: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
2: ओ मेरी बात सुन,
1: कौन बात कौन कर रहा है?
2: ओ महेश।
1: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
2: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
1: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और किस तरह से बोलूंगा?
2: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
1: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
2: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
1: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
2: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
1: फिर वही बात को लेकर आ गया?
2: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
1: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
2: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने
1: वाली बातें कर रहा है क्या?
2: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रही। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
1: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
2: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
1: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
2: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
1: भाई तू है कौन?
2: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
1: हाँ रॉन्ग नंबर है।
2: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
1: राइट नंबर ले
2: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
1: अरे रॉन्ग नंबर, अरे
2: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
1: चल जा, चल काम कर, चल
2: जा।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Na vjetva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Kon?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई माना कर, मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा, तो दुबई जाना है
2: भाई, जल्दी जाना है। तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: हाँ ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
2: आपने सही कह रहे
3: हैं। हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओ के क्या उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

से ना हो पाएगा। कौन बोला, कौन बोला?

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: She Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या बच्चों की किताबें और मूवीज भी हमारी सोच और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आप जो कह रही हैं वो सीएस लुईस जो है वो भी कहते हैं। सीएस लुईस वो इंसान है जिन्होंने नार्निया की पूरी दुनिया बनाई, उन्होंने लिखा नार्निया को, फेरी टेल है, परियों की दुनिया है एक तरह से। और वो कहते थे, खुलेआम कहते थे कि जब मैं 8 साल का था तो मैं छुप छुप के कॉमिक्स पढ़ता था, लेकिन जब मैं 50 साल का बना तो मैं खुलेआम कॉमिक्स पढ़ता था और वो दुनिया ही बना दी मैंने।
4: कॉमिक्स के अंदर बहुत डेप्थ होती है,
3: बिल्कुल होती
4: है, ऐसी बात नहीं है। आपको लगेगा वो कॉमिक है, लेकिन समटाइम्स एनिमेशन, ग्राफिक, कॉमिक्स, इनके अंदर जितनी, इनफैक्ट इवन टॉम एंड जेरी आदि के अंदर भी,
3: और आज भी देखने में कितना मजा आता है।
4: मजा भी है पर बहुत टीचिंग्स भी है,
3: बहुत सारे
4: अंडरस्टैंडिंग भी है। यू कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम एनीवेयर। सी, अगर एक बुक, म्यूजिक आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है, आपको और किसी चीज की कंपनी की जरूरत भी नहीं है, यू वेरी इमोशनली स्ट्रांग।
3: लेकिन जब उसका इम्पैक्ट कहीं और मेरे एनवायरमेंट में हो रहा है, चाहे मेरे प्रोफेशन में हो रहा है या पर्सनल लाइफ में हो रहा है, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं?
4: प्रोफेशनल में वो तो आपने कहा कि अप्रेजल तो अच्छा है।
3: नहीं, अप्रेजल उनको फिर बोला गया कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं तुमको ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुम इतनी इमेच्योर हो, तो भाई
4: इस बेसिस पे तो कोई नहीं निकालेगा ना, परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही निकालेगा ना। अगर आप परफॉर्म वेल कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू परफॉर्मिंग वेल, आपके जो हॉबीज हैं वो आपको डिफाइन करते हैं।
3: निकाला नहीं गया, लेकिन उसका जो अप्रेजल वो अच्छा इस वजह से नहीं हुआ। कह रहे कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, उनको एक वजह चाहिए थी शायद उनको अच्छा अप्रेजल नहीं देने की।
4: आई पर्सनली फील कि और ही ये कम होता जा रहा है। कुछ छोटी छोटी ऐसी हॉबीज होना जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं या अच्छा फील कराते हैं या हैप्पी फील कराते हैं, वो जरूरी है। एज लॉन्ग एज वो कंटेंट एम्पावर कर रहा है, उस कंटेंट के अंदर कुछ भी वायलेंस नहीं है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, वो कंटेंट की क्वालिटी आप चेक कर लें, फिर चाहे वो कॉमिक है, चाहे वो कोई वीडियो गेम है, चाहे वो कोई टीवी शो है, चाहे वो कोई इंस्टाग्राम की रील है, एज लॉन्ग एज अगर वो कंटेंट आपको एम्पावर कर रहा है, आपको अच्छा फील करा रहा है, आपको बेटर पर्सन बना रहा है, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू।
3: तो सीएस लुईस जिन्होंने नार्निया की दुनिया बनाई, वो कहते हैं कि द ऑब्सेशन विद सीमिंग ग्रोन अप इटसेल्फ इज अरेस्टेड डेवलपमेंट। बेसिकली बड़ा होना ही नहीं चाहिए, बच्चे बन के रहो, बहुत खुश रहोगे।
4: बच्चा क्या होता है, बच्चा प्रेजेंट मोमेंट में होता है, छोटी छोटी चीजें एंजॉय करता है
3: और भूल भी जाता जल्दी। अगर कुछ बुरा भी होता है तो बहुत जल्दी भूल जाता है, किसी और दुनिया में लग जाता है।
4: बेस्ट पार्ट है कि बच्चे की जो मेमोरी है ना, देखो एक चीज जो हमें नुकसान करती है, गुड मेमोरी को भी पकड़ के रखना बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट एवरीथिंग, यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट।
3: क्या बात है,
4: आप वो ही सोच रहे हैं कि वो हो
3: जाए, ऐसा हो जाता तो,
4: तो वो भी तो एक चीज की एंजाइटी क्रिएट कर रहा है ना।
3: हर मोमेंट को एंजॉय करो, फिर आगे बढ़ो, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मोमेंट।
4: एब्सोल्युटली, वो बच्चा करता है, उसको किसी भी चीज की एंटिसिपेशन नहीं होती।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, हमारे पास एक सवाल आया है, वॉइस नोट भेजा उन्होंने अहमदाबाद से, तो वो वॉइस नोट मैं आपके लिए चला रहा हूँ।
3: हेलो, नमस्कार विशाल भाई एंड बीके सिस्टर श्रेया जी, और मैं पार्शियल ब्लाइंड बना हूँ 3 साल से, और अभी मेरी फैमिली में हम 3 लोग हैं, मेरा बच्चा, मैं और मेरी मिसिस। मगर मुझे बारंबार ये फील होता है कि वो लोग पहले मुझे जितना रिस्पेक्ट और मुझे जितना कवरेज करते थे या मुझे जितना कोऑपरेट करते थे वो नहीं कर रहे, और हमारे तीनों में बार बार इसी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। किसी को किसी के ऊपर खुली हुई बात पर भरोसा नहीं पड़ता और अच्छी भी नहीं लगती, कॉन्स्टेंट झगड़े टंटे होते रहते हैं। तो उसके लिए आप ही सजेस्ट कीजिए अब क्या करें, क्योंकि मैं अब डिपेंडेंट हो गया हूँ, तो उनके सिवा चलता नहीं है और उनके सिवा रह सकूंगा भी नहीं, और उनको ये एहसास है इसलिए वो मुझे बार बार परेशान कर रहे हो या मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो वैसा मैं फील कर रहा हूँ। तो उसका कुछ सुझाव दीजिए ना प्लीज, कि जिससे मैं स्टेबल रह सकूं, वरना मुझे सुसाइडल अटेम्प्ट करने का या तो कुछ घर छोड़ के भाग जाने का ऐसा परेशानियां लगती है, तो सॉल्यूशन दीजिए प्लीज।
4: जो ये कह रहे हैं, इनके बात से ऐसा लगता है कि मन इनका बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें 2 चीजों की जरूरत है। जब हम कहते हैं हमें सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ये थोड़ी बड़ी बात होती है, हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, हमें वो चीज ऑलरेडी आ रही है, वरना उतने तक पहुँच गई है। थोड़ा सा इसमें अगर हम थेरेपी की हेल्प लेते हैं तो अच्छा होता है।
2: अच्छा।
4: हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लोगों का बिहेवियर हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। पहली बात, रिश्ते जो होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। तो अगर हमारे घर के ही रिश्ते ठीक नहीं है, मतलब वो भी हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, हम भी उनके लिए गलत सोच रहे हैं। एक व्यक्ति भी अगर सही सोचना शुरू करे,
2: उससे भी फर्क पड़ता है।
4: इट इज लाइक थ्रोइंग व्हाइट बॉल। अगर हम उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, ये एफर्ट करें, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे उनके मन को भी चेंज करेगा, उनको भी ट्रांसफॉर्म करेगा। सहयोग तब मिलता है जब रिश्ते में सामने वाला हमारे से संतुष्ट होता है। और संतुष्ट के लिए बहुत सिंपल चीज परमात्मा कहता है, रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। छोटों को स्नेह, बड़े को सम्मान, इतना ही याद रखना है। छोटे हैं उनको प्यार दे रहे हैं, बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, धीरे धीरे वो रिश्ता ठीक हो जाता है। रिश्ता ठीक हो जाता है तो सहयोग है, जो भी आपको कोऑपरेशन है वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कभी कभी किसी सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखना जिंदगी में नए बदलाव की शुरुआत कैसे बन सकता है, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब ये कॉमिक वाली बात हो रही थी मेरे दोस्त की, तो आपने जो कहा कि देखिए बच्चा जैसे बने रहिए,

0: टॉक्सिक है या पॉलिटिकली चार्ज्ड है, पॉलिटिक्स होता है, और उस केस में आपकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, आपको शायद नीचा दिखाया जाता है, तो ऐसे केस में क्या करें?
1: सिवानदिंदर आई रियलाइज जस्ट कि सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है कि कई बार आपको लगता है आप भी का ही पर्सपेक्टिव राइट है और दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है वो गलत है. इसीलिए ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होने का कारण ये है कि आप एक लेंस से देखते हैं और आपको लगता है मैं राइट हूँ, शायद जो दूसरा कुछ ऐसा कॉमिक पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है वो गलत है. इसीलिए आप जो करते हैं आपको उसके ऊपर कंप्लीट फेथ होना चाहिए. आपके पास इनफ रीजनिंग होने चाहिए कि मैं वो क्यों कर रहा हूँ. आप कन्विंस्ड होने चाहिए, देन यू विल नेवर बी पुल्ड डाउन बाय अनदर पर्सन. वो कितना भी कहेंगे पर आपके पास रीजनिंग है ना, आप उनको कह सकते हैं या अपने को कह सकते हैं कि दिस गिव्स मी जॉय, दिस गिव्स मी पर्सपेक्टिव, दिस गिव्स मी मोर अंडरस्टैंडिंग. तो वो आपको क्रिएटिव फ्रीडम, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा. देयर आर सो मेनी पीपल, आपने बहुत सुंदर कहा कि जब वो कहीं पर इस तरह के फैंटेसी वर्ल्ड में थोड़े समय के लिए चले जाते हैं दे बिकम क्रिएटिवली चार्ज्ड. उनको एक नया आइडिया, क्योंकि मन बहुत उथल पथल में होता है. कभी कभी इस प्रकार का कोई हॉबी है, किसी के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी के लिए कॉमिक पढ़ना होता है, किसी के लिए बीच के पास जाकर के बैठना होता है, दैट गिव्स देम अ न्यू आइडिया.
0: लेकिन कभी कभी क्या होता है सिस्टर, इसको गलत बताया जाता है. जैसे मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जानता हूँ जहाँ पर आप ऑफिसेज में फेसबुक नहीं यूज कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी नहीं यूज कर सकते, आप इंस्टाग्राम पे नहीं जा सकते, और मुझे लगता है आप जितना बांधने की कोशिश करोगे लोगों को वो उतने ही तरीके निकाल लेंगे आपके रूल्स को नहीं फॉलो करने के, तो काम तो आपका वैसे ही नहीं हो रहा है. ये सही तरीका है एक ऑफिस को चलाने का?
1: सही तरीका होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ हर एक अपने आप डिसिप्लिन से चले, वो सही तरीका होता है. वेयर यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ आपको कुछ बार बार टोकना नहीं पड़ता, नोट नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा किसी को देखना नहीं पड़ता, पर हर एक विलिंगली, चाहे वो एक मेडिटेशन सेंटर है, चाहे एक ऑफिस है, चाहे वो घर है, हर जगह कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है.
0: वो विलिंगली कंट्रीब्यूट करें,
1: वो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको खुद से दिल हो वो करने की. लेकिन जब वो एनवायरनमेंट नहीं होता तो फिर चाहे वर्ल्ड के लेवल पर, घर के लेवल पर एक जो कॉमन चीज दिखाई देती है, नियम नियम नियम, रूल रूल रूल. व्यक्ति, एनीबॉडी, एज अ सोल वी वांट टू बी फ्री, वी डोंट वांट टू बी बाउंड बाय टू मेनी रूल्स. वो रूल्स फिर वो कंट्रोल में जाता है, कंट्रोल आपको बॉन्डेज की फीलिंग दिलाता है, फिर वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक होने लग जाता है. सो क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ कोई अपने आप ही गलत नहीं करे.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब employees किसी leader के decisions का विरोध करने लगे तो एक अच्छा leader उस परिस्थिति को कैसे संभाले, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, यूर राइट, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है जहां रोल के बेसिस पे आपको लगता है क्योंकि मैं बॉस हूं सबको मेरी बात माननी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपके पास एक विजन होता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी कोई नई चीज लाने की कोशिश की जाती है तो ज्यादातर लोग रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं होते। तो उस केस में कभी कभी जो सीईओ होता है या जो ओनर होता है या जो भी बॉस होता है, उनको ये बोलना पड़ता है कि भैया देखो ऐसा है, यही हम करेंगे, तुम करके तो देखो एक बार।
4: नहीं, उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, अगर आपका विजन बिल्कुल आपको पता है कि राइट है, क्योंकि अगर आप लीडर हैं तो आप विजनरी हैं, फास्ट साइटेड हैं, आप वो देख सकते हैं जो शायद आपकी टीम नहीं देख सकती, इसीलिए आप उस पोजिशन पर हैं। पर जब आप वो चीज पहली बार शेयर करते हैं वो रेजिस्टेंस आता है क्योंकि वो चीज नहीं देख पाते। आपको फर्स्ट मीटिंग में उस रेजिस्टेंस के लिए तैयार होना चाहिए, और आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम यही करेंगे, वो कंट्रोल है। आपको उस मीटिंग में प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ये शायद वो चीज नहीं देख सकते तो शायद रेजिस्ट करेंगे, और बहुत अपनी बात कह करके टाइम देना चाहिए। देन यू शुड हैव अनदर मीटिंग। आप अपनी बात पर टिके रहे वो बात नहीं है, पर आप समय दें कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझ सके और आप सेम पेज पर आ सके, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि अगर आपका विजन बहुत सही भी है पर टीम अलाइंड नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफल वो तभी होगा क्योंकि सब मिल करके करेंगे। संगठन की बहुत शक्ति है, वो गोवर्धन पर्वत के लिए कहते हैं कि सबकी एक एक उंगली से भी पहाड़ उठ गया। अगर वो संगठन की शक्ति नहीं होगी तो विजन ठीक होकर के भी फेल हो जाएगा। आपको लगेगा विजन गलत था, विजन गलत नहीं था लेकिन टीम अलाइंड नहीं थी। तो उसमें थोड़ा स्पेस देना पड़ता है कि एवरीबॉडी कम्स ऑन वन पेज।
3: बिल्कुल, वैसे भी मैराथन है, सोलो रेस तो है नहीं, आप
4: सोलो रेस नहीं कर पाएंगे, टीम के बिना नहीं कर सकते। मालिक बन करके राय दें लेकिन देन स्पेस दें। सी, हमेशा करना वही चाहिए जो मेजोरिटी को ठीक लगता है।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। वो लिखती हैं कि मैं भगवान में आस्था रखती हूँ लेकिन मेरे कुछ दोस्त जीवन की तकलीफों के कारण ईश्वर पर विश्वास खो चुके हैं। उनका सवाल है, अगर आज भी परेशानियां पिछले जन्म के कर्मों का फल है तो बिना याद हुए उन कर्मों की सजा क्यों? फिर इस जन्म के अच्छे कर्मों और प्रार्थना का क्या महत्व है और क्या हमारे वर्तमान कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है या वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है?
3: तो ये दो तीन सवाल हैं। पहली चीज तो कर्म शरीर नहीं करता है।
2: हाँ।
3: कर्म आत्मा करती है, इसलिए टाइटल भी क्या देते हैं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा।
2: जी बिल्कुल।
3: तो जो हमें लगता है कि इसी जन्म में हो जाए, ये जन्म केवल एक बॉडी के लिए है।
2: हाँ।
3: बर्थ हुआ, डेथ हुआ।
2: हाँ।
3: पर जो कर्म आत्मा ने किया वो अपने कर्मों का हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड ले जाती है।
2: अच्छा।
3: उसी अनुसार अगला जन्म भी होता है।
2: जी।
3: जन्म में भी आप देखते हैं, आपको वो दिखाई देगा ना। कई बार हम कहते हैं जन्म से ही इसको दिखाई नहीं देता, जन्म से इतना बीमार है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है। तो वो पास्ट के कर्म का भी इम्पैक्ट है और आगे भी जर्नी में वो कभी ना कभी रिटर्न होंगे, पर कब होंगे वो नहीं पता।
2: नहीं पता।
3: बिकॉज इट इज डन बाय द सोल एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू कम बैक टू द सोल। अब अगर मैंने ही कर्म किए और मुझे ही उसको सामना करना है तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है या भगवान को याद करने की क्या जरूरत है? हम भगवान को इसलिए कई बार लोग याद करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देगा।
2: हाँ।
3: लेकिन भगवान भी इस चीज की समझ देता है कि मैं किसी के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता।
2: अच्छा, आप ही को करना है?
3: नहीं, अगर आपके बच्चे का होमवर्क है तो आप करेंगे।
2: नहीं, सही बात है।
3: और आप नहीं करेंगे तो आप कोई उनसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो बच्चे का होमवर्क है, बच्चे का होमवर्क बच्चे को ही करना पड़ेगा। आप हेल्प कर सकते हैं,
2: गाइड कर सकते हैं।
3: आपके पास उससे 100 times ज्यादा मना उस चीज की नॉलेज है, वो आपके लिए बहुत इजी है। ABCD भी लिखना है वो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपके लिए बहुत इजी है। तो जैसे मुझे ये समझ होती है कि ये बड़ा चैलेंज है, मैं कमजोर हूँ लेकिन सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो उससे मिला हुआ विजडम, समझ भी तो चाहिए ना। आधी चीजों में तो हमें ये भी नहीं पता होता कि करना क्या है, इस चीज का सामना कैसे करना है, इस समय क्या सोचना है, इस समय क्या बोलना है, अपने को क्या समझाना है। तो विजडम, और विजडम के बाद पावर। कई बार सत्य पता होता है लेकिन सत्य पर चलने की ताकत नहीं होती।
2: हाँ, सही बात।
3: तो सत्य और सत्य पर चलने की ताकत वो हमें प्रार्थना से मिलती है, वो भगवान को याद करने से मिलती है कि आगे का कर्म हमारा ठीक हो।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या जहाँ प्यार ज्यादा होता है वहाँ टकरार भी ज्यादा होना स्वाभाविक है, आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अक्सर कहते हैं कि लड़ाई भी वहाँ घमासान होती है जहाँ प्यार घमासान होता है, बहुत ज्यादा जहाँ प्यार उतनी बड़ी लड़ाई, तो फिर ये कैसे हाथ, how do these go hand in hand?
4: They don't go hand in hand.
3: Okay.
4: They don't go hand in hand because over a period of time, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है वो रिश्ता कमजोर होगा।
3: अच्छा।
4: कहीं पर ही एक मार आपको बार बार पड़ रही है, फिजिकल बॉडी में भी अगर एक मार आपको कहीं पर बार बार पड़ रही है, आप ठीक हो जाएंगे, फिर होगा, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर होगा, फिर होगा, फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ ठीक होने के लायक ही नहीं बचेगी, वो कहेंगे बस अभी इसमें कोई होप नहीं है। ऐसे ही किसी रिश्ते में शुरुआत में क्या होता है, ठीक होता है, पहला आर्ग्यूमेंट होता है इतनी बड़ी बात नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर एक ऐसी बात हो जाती है कि कोई बड़ी बात ही नहीं होती है, फिर जब झगड़ा होता है कोई बड़ी बात नहीं, एक शब्द में ही हो जाता है, एक लाइन में ही हो जाता है,
3: पाइल ऑन
4: हो जाता है, फिर वो एकदम ब्रेक हो जाता है, फिर वो कहते हैं दिस इज डन, नाउ इट इज डन, नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप। एक्चुअली इट इज नॉट अ गुड थिंग कि आप किसी रिश्ते में झगड़े ठीक हों, क्योंकि वो एक बार जब कमजोर होना शुरू हो जाता है तो कोई भी चीज में दरार है और कोई चीज में नहीं दरार है उसमें फर्क तो है ही ना।
3: बिल्कुल।
4: कोई चीज में आपने झगड़ के आप ठीक तो करेंगे, पर आप उसको अगर रूटीन बना ले और आप सोचें कि उसके बाद इसका रिश्ते पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हर नेगेटिव एनर्जी का ग्रेजुअली रिश्ते के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

थॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि हमें हमारे मन को कैसे नियंत्रित रखना चाहिए।
3: सिमन एक फैक्ट्री है जिसका काम है सोचना।
2: हाँ बिल्कुल,
3: और आप कितना भी सोचे वो जीरो थॉट पर नहीं आ सकता।
2: पॉसिबल,
3: मतलब उसको नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि वो सोचना बंद कर दे। नियंत्रित डिसिप्लिन करने का मतलब है कि आप जो सोचना चाहें वो सोचे।
2: हाँ,
3: माना आप सोचना चाहते हैं सोल्यूशन के बारे में।
2: हाँ, लेकिन प्रॉब्लम की तरफ ही बार बार जा रहा है, वो सही नहीं।
3: हाँ, तो वो एक साइन है कि आपका मन वीक है
2: जी।
3: बाकी वो सोचना नहीं बंद करेगा किसी चीज के बारे में। आपको परसों सोचना है पर आपका मन आज ही उस जगह पे जा रहा है। सो उसमें हम कहते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड है
2: जी।
3: उसके लिए फिर अगर हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमें हेल्प करती है कि अपने मन को जहाँ लगाना है, जितना समय के लिए लगाना है, जो सोचना है, जिस थॉट को क्रिएट करना है, हम मालिक बन के कर सकें। क्योंकि मेरा मन है तो मेरी जो चीज़ मेरी होती है वो मेरे कंट्रोल से चलनी चाहिए। वो मेरी कर्मेंद्री है, मैं मालिक हूँ। तो मेरा मन मेरे ऑर्डर से चलना चाहिए। और जैसे हम किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन करते हैं, आज एक बच्चा है वो कहीं भी हाथ लगाता है, कहीं भी जाता है, आप उसको डिसिप्लिन करते हैं ना, नहीं बैठ जाओ, नहीं आप अभी उठो, नहीं, ऐसे ही मन के साथ बात कर करके उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है कि ये गलत नहीं सोचना, सही सोचना है। वो कहेंगे ऐसे क्यों कर रहा है, वो उसका संस्कार है, मुझे क्या करना है। तो जैसे आप सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो मन नियंत्रित हो जाता है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्च।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर, विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
2: एब्सोल्युटली नॉट। उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
1: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है
2: स्पिरिचुअलिटी। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
1: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहाँ से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील की स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है, है ना? लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
1: अच्छा।
2: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
1: अच्छा।
2: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years she said we went to the best doctors Indoor mein, Mumbai mein, everywhere, neurosurgeon, sab kuch, par diagnosis hi nahi hua. 4 years ke baad wo ekdam khatam ho gaya.
1: Achha.
2: Kya bimari thi pata nahi. Then she could go back to college. Abhi wo bhi apni medicine kar rahi hai. But she said wo 4 years ka jo period tha itna challenging, agar main spiritually strong nahi hoti, stable nahi hoti, to kabhi bhi hum usko cross nahi kar pate, kyunki us samay par usko homeschool karna, treatment dena, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेक भी नहीं पड़ेगा। मतलब इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना, आपका योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
1: बहुत खूबसूरत।
2: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन, आप उस समय पर हैं। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
1: उसका
2: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो अलार्म क्लॉक और इंडियन मॉम्स में ना एक मेजर डिफरेंस होता है. अलार्म क्लॉक जो है वो तुम्हें कभी चप्पल से नहीं मारेगी. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स. आई होप मम्मा नहीं सुन रही अभी. आज का तुम्हारा फेवरेट शो शुरू हो चुका है, नया नया दिन शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल तुम शुरू हुए हो या अभी तक बेड पर लेटे पड़े हो या फिलहाल ऑलरेडी ट्रैफिक में अटके हुए हो या परौंठे पलट रहे हो या फिर घर से वर्क फ्रॉम होम करने का प्रिटेंड कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ में चिपक के बैठने वाली हूँ. अगले कुछ घंटों में हम बॉलीवुड के बिगेस्ट हिट सुनने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, फिल्मी गॉसिप, फन कॉन्वर्सेशन और वो देसी वॉर्म्थ जो सिर्फ एक फेलो देसी ही फील कर सकता है. सब कुछ आ रहा है यहीं पर. एड्रेस है मिर्ची और सुनने वाले हो तो मेरे आने की प्रिसिला के साथ में. फटाफट से मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था.
3: शशि वो मैनहट्टन है.
2: मैनहट्टन
4: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी.
3: टैन मतलब वो धूप की छाप.

0: Milchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Milchi, burga. Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं। विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लासेज, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: हाँ, ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने हैं। अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखता
2: हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। मिलते हैं किस दिन? हाँ
1: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे।
2: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या मतलब, काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेज की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: रेडियो
3: मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: कभी नोटिस किया है, हिस्ट्री जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होती है। एक मैसेज इंस्पिरेशनल होता है और अगला ही शॉकिंग हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और हिस्ट्री की बात चली रही है तो लेट्स फाइंड आउट आज का दिन क्यों स्पेशल है। 2nd of July, सबसे पहले चलते हैं 1776 में, जब अमेरिका के लीडर्स ने ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के फेवर में वोट किया। फन फैक्ट ये है कि जॉन एडम्स को लगता था लोग 2nd of July सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सरप्राइज दो दिन बाद वाला डेट चुना गया फाइनली। एंड 1964 में प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट साइन किया, अ हिस्टोरिक लॉ जिसने रेस, रिलीजन, जेंडर और नेशनलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल बना दिया। फिर आता है 1976, जहां पर नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम ऑफिशियली एक देश बन गए। हिस्ट्री में आज के दिन का एक बहुत इमोशनल चैप्टर भी है। 1990 में हज के दौरान मेका टनल ट्रेजेडी में हजारों पिलग्रिम्स ने अपनी जान गंवा दी। आज के दिन हम उन सबको रिस्पेक्टफुली याद करते हैं। देखा एक दिन में कितना कुछ हुआ था पास्ट में, लेकिन आगे आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स जस्ट फॉर यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, और व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची का।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: यार कभी लाइफ ने तुम्हें इतना सरप्राइज किया है कि तुमने सोचा हो प्लॉट ट्विस्ट हो जाए और प्लॉट ट्विस्ट हो गया हो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
1: कल का बिगेस्ट फुटबॉल थ्रिलर था इंग्लैंड वर्सेस डीआर कांगो। मैच की शुरुआत में ही डीआर कांगो ने 7th मिनट में गोल मार दिया और इंग्लैंड फैंस की कॉफी भी ठंडी हो गई। लेकिन एंटर कैप्टन हैरी केन, यानी कि फुटबॉल का सर्टिफाइड मेन कैरेक्टर। पहले 75th मिनट में इक्वलाइजर और फिर 86th मिनट में एक स्टनिंग विनर। फाइनल स्कोर था इंग्लैंड 2 डीआर कांगो 1। इंग्लैंड सर्वाइव कर गया है। अब राउंड 16 में कोहोस्ट मेक्सिको से टकराएंगे इन व्हाट प्रॉमिसेस to be a blockbuster knockout clash। और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, कल बेल्जियम ने एक्स्ट्रा टाइम में सेनेगल को 3-2 से हराया, जबकि यूएसए ने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को 2-0 से बीट करके राउंड ऑफ 16 का टिकट भी पक्का कर लिया है। फुटबॉल फैंस, अब टूर्नामेंट ऑफिशियली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, ये तो तुमको वैसे पता ही होगा। ऐसे स्पोर्ट्स अपडेट्स तुम्हें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर ना इतना ड्रामेटिक है, ऐसे बॉलीवुड में सास का रोल मिल सकता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। चलो जल्दी से देखते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर आज की वेदर रिपोर्ट। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 79 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील हो रहा है अराउंड 82 डिग्रीज फारेनहाइट। इतना डिफरेंस। वैसे दिन भर रहने वाली है सनशाइन की सनशाइन, कोई रेन चेक नहीं है। लिटरली पिछले 24 घंटों में जीरो रेन थी और अगले 24 घंटों में भी जीरो रेन एक्सपेक्टेड है। मतलब आज अगर तुम बारिश के चलते अपने कोई प्लान्स कैंसिल करने वाले थे, किसी डेट से बाहर निकलने वाले थे, इट्स नॉट गोना वर्क सैडली। लेकिन आफ्टरनून तक मर्करी 101 डिग्रीज तक पहुंच सकती है और फील्स लाइक टेम्परेचर होने वाला है 104 डिग्रीज फारेनहाइट तक। मतलब आज ह्यूमिडिटी, धूप और हवा मिलकर थोड़ा मिर्चीदार बन रही है, यानी कि हॉट हॉट फील कराने वाले है तुमको। और एक इंपॉर्टेंट हेड्स अप है, आज एक्सट्रीम हीट वार्निंग और एयर क्वालिटी अलर्ट दोनों इन इफेक्ट है थ्रू सैटरडे इवनिंग। अगर बाहर जाना बहुत जरूरी ना हो तो घर पर बैठो एसी के अंदर, और अगर जाना जरूरी है तो अपना पानी साथ में कैरी करो। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर सन प्रोटेक्शन एसपीएफ 50++++ के साथ वाला, एंड ऑफ कोर्स लेयर के प्लेयर बनो ताकि तुम्हें जब गर्मी लगे तो तुम अपनी लेयर्स उतार सको। जैसे कल का हाई 98 डिग्रीज फारेनहाइट तक था और आज 101 डिग्रीज फारेनहाइट तक जाने वाला है, तो वेदर को लगता है थोड़ा सा प्रमोशन मिल गया है। एंड लेट्स ऑल्सो ग्रेजुएट टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। बोले तो मिर्चीदार बैंगर्स आने वाले तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, मेरे सोशल्स इंस्टाग्राम और एक्स पर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नमस्ते, सलाम एंड गुड मॉर्निंग. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. और अब हम सुनने वाले हैं मिर्ची आवर का थ्री. सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार नए एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर से गिफ्ट हुआ ये एयरक्राफ्ट लग्जरी इंटीरियर्स के लिए काफी चर्चा में है. फ्रॉम प्लश कार्पेट्स टू लाइव फ्लैट सीट्स, सेफ टू से ये फ्लाइट डेफिनेटली इकोनॉमी क्लास वाली फीलिंग नहीं देती है. नंबर टू पर इंडिया और जापान की डिप्लोमेसी में एक वार्म मोमेंट देखने को मिला है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वार्मली वेलकम जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए टाकाइची, कॉलिंग हर छोटी बहन. उन्होंने स्पीच की शुरुआत कोनिचीवा से की और एंड किया आरिगातो गुज़ाइमासु के साथ. एंड फाइनली नंबर थ्री पर फुटबॉल फैंस, मेक्सिको की वर्ल्ड कप विक्ट्री सेलिब्रेशन इतनी जबरदस्त थी कि लोगों की जंपिंग और चीयरिंग से नियर बाय साइस्मिक स्टेशन ने ग्राउंड वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लिए. लेकिन रिलैक्स, ये नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था, बस फैंस के एक्साइटमेंट रिक्टर स्केल पर ओवर अचीवर की तरह रिकॉर्ड हो गए. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री विद मी प्रिसिला. मुझसे कनेक्ट करने के लिए इंस्टा और एक्स पर जाओ तो ढूंढो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hello.
1: Con?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे, उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा था इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
1: अभी पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है?
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है
2: आपसे। मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
2: आई लव यू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब एक टेक अपडेट का टाइम आ चुका है. व्हाट्सएप एक नया यूजर नेम फीचर लाने की तैयारी में था, जिससे लोग बिना अपना नंबर शेयर किए ही एक यूजर नेम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. साउंड्स फेमिलियर? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया वाइब्स है एंड प्रीटी मच द आइडिया दैट टेलीग्राम हैज, उसको पूरा कॉपी किया गया है. लेकिन अभी इस फीचर पे पॉज लग गया है. क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा से इस फीचर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगा है और रोल आउट को फिलहाल रोकने को, पॉज करने को कहा गया है, जब तक कि कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता. अब इसका आगे क्या होगा वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट भाग रही है उतना ही फास्ट उसके रूल्स एंड डिस्कशंस अभी इवॉल्व नहीं हो रहे हैं. बहुत सारे हिडन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें नहीं पता चलते हैं. जैसे देसी लोग जो है ना, वो नंबर, यूजर नेम, पब्लिक प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल सब कुछ निकालने में एक्सपर्ट्स होते हैं. डोंट यू अग्री विद मी? जैसे अगर तुम्हें किसी का यूजर नेम पता करना होगा तो तुम किससे पूछोगे? तुम्हारे फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कौन है वो गॉसिप किंग और क्वीन? लेट मी नो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. यहाँ डीएम कर सकते हो. व्हाट्सएप करने के लिए 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर, 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची फ्रेश माल।
1: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

0: गाने को आवाज दी है नील कमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नील कमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सुनो, अब टाइम हो चुका है कि तुम्हारे बर्थडे ट्विंस कौन कौन है वो पता करें। मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू विद झप्पीज एंड पपीज। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है तो तुम शेयर कर रहे हो मार्गो रॉबी के साथ, यस द फॉरएवर बार्बी, एंड साथ साथ में अनदर ब्यूटीफुल डीवा फ्रॉम हॉलीवुड लिंडसी लोहान, वो भी आज ही बॉर्न हुई थी, एंड देन डिज्नी फैंस एशली टिसडेल, एंड म्यूजिक लवर्स के लिए सिंगर मिशेल ब्रांच एंड हमारी अपनी शर्ली सेठिया। कॉमेडी किंग लैरी डेविड भी आज ही इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो एक बात याद रखना कि बर्थडे जो है वो सिर्फ एज बढ़ाने का रिमाइंडर नहीं होते थे, प्रूफ कि दुनिया उस दिन थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो गई थी जिस दिन तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो केक खाओ, कैलोरीज को आज लीव पर जाने दो और खुद को सेलिब्रेट करो, बिकॉज यू डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड। एंड तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेलिस्ट लेकर आ चुकी हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड अपने बर्थडे शाउट आउट्स मुझे भेज सकते हो तुम यहाँ पर। ऑफकोर्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गाना चला तो गाना चला तो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you, Mirchi Mornings. पर अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है.
2: Rajwas wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,240 $4,240 पड़ रहे हैं उसके साथ. आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं. कैसे, आइए राजज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं. और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के. आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
1: देयर यू गो. गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और टाइम हो गया है मिर्ची आवर का 3 का ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सबसे पहले टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की रिपोर्टेड वेडिंग की डिस्कशन फुल स्विंग में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलिब्रेशन की कॉस्ट 15 to 20 million dollars तक जा सकती है, और एक देसी कनेक्शन भी है। रिहर्सल डिनर इज रिपोर्टेडली इंफोसिस थिएटर में होने वाला है एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन। मतलब बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, एक इंडियन टच तो हर शादी में बनता है। नंबर 2 पर किंग खान इज प्लेइंग अ रॉयल इनिंग ऑफ द फील्ड। शाहरुख खान ने लॉस एंजलिस में नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड अनवेल किया है। ये स्टेडियम मेजर लीग क्रिकेट का होम ग्राउंड होगा, एंड एलए ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट मैचेस होस्ट करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने मैच जीतने के साथ साथ इंटरनेट भी जीत लिया है। ब्रेक के दौरान उन्होंने एक बॉल गर्ल से शर्ट का टैग कट करवाया और फिर मजाक में ऐसा एक्ट किया जैसे सीजर्स से उन्हें चोट लग गई है। बॉल गर्ल एक सेकेंड के लिए बिल्कुल ही फ्रीज हो गई, फिर नोवाक खुद ही हंस पड़े। मैच भी जीत लिया, प्रैंक भी वायरल हो गया। आई मीन, कैन समवन स्टॉप दिस गाय? दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La viva la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा
3: है? पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात,
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो
3: जब डर गया
2: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू मैंने तुझसे
2: वाली बातें कर रहा है?
3: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हुई नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहां है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर, अरे जा,
3: बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
2: यार, चल जा, चल काम कर, चल।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।